नमस्कार नमस्कार नमस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं साथ में सांगीतिक अभिवादन दुखियाओं कार्यक्रम गांबस्तिका भाका के श्रृंखला कार्यक्रम गांबस्तिका भाका को पर्खाई में प्रतीक्षा में रहने भाग संपूर्ण श्रोता पर्खाई को घड़ी मेटाने का उपस्थित भएकी छु म आरती।

आदि खोला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भर पर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।